0: खरीदा जाएगा और इसलिए 15 करोड़ का एडवांस जो है वो देने के लिए सांसदों को यहाँ पे दिल्ली में बुलाया गया है। उन्होंने आंकड़ा भी डाला है कि कितने करोड़ दिए जा रहे हैं। 15 करोड़ में सांसद खरीदी का काम जो है वो चल रहा है और ये घिनौना है, ऐसा उन्होंने अभी ट्वीट भी किया है। दोनों ग्रुप जो है वह अभी दिल्ली में है। एक तरफ से उद्धव ठाकरे के जो 6 सांसद टूटने वाले है वो भी अभी दिल्ली में आए हैं और कुछ सांसद जो है वो अभी भी आ रहे हैं, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के जो भरोसे के सांसद है अनिल देसाई, अरविंद सावंत, ये दोनों और संजय राउत, ये तीनों दिल्ली में सुबह से ही आए हैं, क्योंकि अनिल देसाई ये चीफ व्हिप है और अरविंद सावंत ये ग्रुप लीडर है। तो कोई भी अगर एक्शन लेनी है तो इन दोनों को ही एक्शन लेनी होगी। कोई भी कॉग्निजेंस अगर रजिस्टर करना है या फिर लोकसभा अध्यक्ष के पास जाकर कोई भी कंप्लेंट करनी है तो इन दोनों को ही करनी है, और इन दोनों ने ही आज दिन भर जो सांसद नाराज थे उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन पूरी सभी कोशिशें जो है वो नाकाम हुई ऐसे दिख रहा है। और आज रात की फ्लाइट से ये सभी सांसद 6 सांसद यहाँ पे आ रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी दूसरी बार टूट की कगार पे खड़ी है। देखना होगा कल का दिन, ये महत्वपूर्ण होगा उद्धव ठाकरे के लिए। और खबर ये भी है कि एकनाथ शिंदे आज रात को आने वाले हैं और जो बागी सांसद है उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं और फिर ग्रुप लीडर जो है वो तय किया जाएगा, व्हिप तय किया जाएगा, और जो प्रोसीजर है वो कल पूरी की जाएगी। तो इसका मतलब है कि 20 तारीख से पहले ये पूरी प्रोसीजर जो है वो खत्म होगी। तो इसलिए कल का दिन दिल्ली में महत्वपूर्ण है उद्धव ठाकरे के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए भी।
1: एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनसाइटफुल डिटेल कमिंग इन माय कॉलीग, थैंक यू सो मच राम शिंदे फॉर गिविंग अस। राम शिंदे वॉज इन्फॉर्मिंग अस दैट टुनाइट इज अ वेरी की नाइट, 15 करोड़ इज द प्राइस दैट इज बीइंग ऑफर्ड फ्रॉम शिंदे सेना टू यूबीटी एमएलएज, एंड दीज MPs are flying tonight to Delhi where a meeting will be held with the Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde, in whose party these disgruntled netas from Uddhav's faction will be coming in. So important details there being highlighted of how Operation Tiger is being played out in Maharashtra. To tell you more about this in detail, the Maharashtra politics is buzz with this Operation Tiger. What is this Operation Tiger? This is the Uddhav Sena symbol, after which this whole ruckus has been created about how people are unhappy in UBT and they want to switch sides. Now, Maharashtra, Shinde Sena leader has made a big claim saying that at least 7 Uddhav Sena MPs are willing to join Shinde faction before the monsoon session. The statement comes amid increased political activity and back-channel discussions in the state. Meanwhile, Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde evaded any question on Operation Tiger, maintaining silence on the political controversy surrounding the issue. Uddhav Thackeray has summoned party MLAs on June 22nd amid Operation Tiger buzz. Shiv Sena UBT is likely to discuss party strategy and future political course with them. With both sides making strong claims, all eyes are now on whether the monsoon session sees a major political shake-up in Maharashtra. How many MLAs, MPs will stay with Uddhav and how many will jump ship to Shinde Sena? Sample the reactions.
2: टाइगर चल रहा है, एक बाइट कर रहे हैं। सिंधु सर, 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। ऑपरेशन टाइगर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में, दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक।
3: उसका मतलब है कि वो लोग टाइगर समझते हैं ना कि हम टाइगर हैं, और टाइगर का ऑपरेशन आसान नहीं होता है। कोशिश तो करेंगे, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, देश कल्याण का काम नहीं है, जनता के कल्याण का काम नहीं है। पार्टियां तोड़ो, लोगों से संपर्क, यही काम चल रहा होता
4: है। संकट नहीं है।
3: अगर संकट आता है तो संकट को निपटा लेंगे।
5: ऑपरेशन टाइगर की जो खबर आ रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
6: ऐसा कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं है। ये बात ज़रूर है कि मीडिया में साल डेढ़ साल से ये बातें इंटरमीडियंटली आते रहती हैं और उसको उसकाया जाता है, उसको लाया जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। सीरीज ऑफ मीटिंग्स इन द लास्ट 1.5 ईयर्स हैव बीन कंडक्टेड बाय उद्धव जी, कन्वीन बाय उद्धव जी, एंड एवरीवन अटेंडेड इन द लास्ट मीटिंग। 4 ऑफ अस वेयर देयर इन पर्सन, After that, five of them were there. They were on video conferencing. Mm.

0: टाइगर चल रहा है, एक बाइक दूर है, पांच से छह सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। ऑपरेशन टाइगर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक।
1: Well, on this, we have our correspondent Ram Shinde joining us on the broadcast. You know, Ram, help us understand. We're learning important breaking news that's coming in from sources that Eknath Shinde could potentially be in Delhi and has already met with the UBT member parliaments.
2: बिल्कुल, जो हमारी जानकारी है, एकनाथ शिंदे कल रात में दिल्ली आए, दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ वक्त तक वो रुके, वहाँ पे कुछ सांसदों से उन्होंने बातचीत भी की, एयरपोर्ट पे ही मीटिंग की, उसके बाद वो जयपुर चले गए और जयपुर जाने के बाद फिर से वो दिल्ली में आ गए हैं। तो एकनाथ शिंदे अभी दिल्ली में ही है और जानकारी ये है कि जो सांसदों को प्रॉमिस किया गया था उसके बारे में ये मीटिंग थी और जिस तरह से बाहर निकलना है, पार्टी से स्प्लिट करना है, तो कौन सी स्ट्रैटेजी होगी, इस स्ट्रैटेजी पे बात हो गई है। सेंट्रल मिनिस्ट्री कितनी मिलेंगी, कितने बर्थ मिलेंगे, इसके ऊपर बातचीत हो गई है। अनदर कौन सी कम्युनिटी का मेंबर कौन बनेगा या फिर चेयरमैन कौन बनेगा, इसके ऊपर भी बातचीत हो गई है। और एकनाथ शिंदे ने भी जो हमें पता चला है कि जो हाईकमांड है बीजेपी की, उनसे भी बात की है एकनाथ शिंदे ने, और इसलिए आज एक लेटर जो है ये सांसद दे सकते हैं, आज शाम तक कभी भी किसी भी वक्त दे सकते हैं, और पार्टी से अलग होकर ये गुट जो है वो अपना ग्रुप लीडर बना सकता है और चीफ व्हिप भी बना सकता है, और ये खत जो है वो पार्लियामेंट में जाकर लोकसभा अध्यक्ष को दिया जा सकता है। लेकिन ये जब खत दिया जाता है तो सिग्नेचर के साथ सभी सांसद वहां पे मौजूद होना जरूरी है, लेकिन हमारी जानकारी ये है कि अभी एकनाथ शिंदे के साथ छह सांसद है, तो ये छह सांसद वहां पे मौजूद रहेंगे, फिर सिग्नेचर होगी एंड देन वीडियोग्राफी भी होगी।
1: All right, Ram, thank you so much for joining us and sharing those crucial updates with us. Like my colleague Ram was just mentioning, the sources have gone on to indicate that Eknath Shinde is currently present in the national capital. He went to Jaipur overnight and then left for the national capital, where he's even potentially met with the UBT member parliaments in New Delhi. So it remains to be seen what truly happens in the latest that's unfolding in Maharashtra. Well, moving on to more updates coming in at this hour. Of course, the big question that looms over is now, will Maharashtra witness another political split? Now, there are speculations that Operation Tiger is now in motion, with the Shinde camp claiming that as many as 7 of the 9 Uddhav camp member parliaments could join them. Sources tell NDTV that Uddhav Thackeray reached out to the member parliaments amid the rising defection buzz. Some member parliaments' phone was switched off while others remained unreachable. After the Matoshri meeting on Sunday, another member parliament meeting is now expected in the national capital. A meeting of the MLAs has also been called on June 22nd. Eknath Shinde has stayed silent, but his camp goes on to insist that those backing his leadership will eventually shift. Meanwhile, the BJP is eyeing a further boost to the NDA numbers in the parliament, days after 20 TMC rebel member parliaments extended support to the party.
3: एक बार फिर से ऑपरेशन टाइगर की खबर आप लोग तो सुन ही रहे होंगे। हमारे नेता अभी संजय राउत जी ने ट्वीट किया है कि 15-15 करोड़ रुपए में सांसद खरीदे और बेचे जा रहे हैं। बताइए, 2022 में ऐसे ही 20 जून को पार्टी तोड़ी गई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। हमने कहा है कि यह शिवसेना हमारी असली है, धनुष्बाण हमारा चुनाव चिन्ह है, अब तक उसका फैसला आया नहीं। तब तक 2026 में पुनः एक बार हमारी पार्टी तोड़ने की एक साजिश रची जा रही है। अब आप सोचिए कि 9 सांसद हमारे पास हैं, 2 साल से हैं, हमारे नाम पर जीत के आए, हमारे चुनाव चिन्ह पर, हमारे नेता के आशीर्वाद से चुनाव जीत के आए हैं, और अब पता चल रहा है कि सब दिल्ली रवाना हो रहे हैं।
4: यूबीटी के सांसद उद्धव ठाकरे जी से नाराज है। सांसद ही क्यों, विधायक नाराज है, उनके कॉर्पोरेटर्स नाराज है, हर एक कार्यकर्ता नाराज है, सब उनको छोड़ के जा रहे हैं। इसके बारे में उनका रीजन क्या, हमसे पूछने बजाय उनको पूछना चाहिए थे। हम क्या उसका रीजन बताएंगे? अगर एक सांसद अपने मतदार संघ के बारे में जो कुछ कठिनाई है, अगर आयुष मंत्रालय के हमारे मिनिस्टर को मिलता है, तो उसमें गलत क्या है? महाराष्ट्र के मंत्री है,

0: इनके मतदार संघ को कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो लेके गए होंगे उनके पास।
1: बहुत अच्छा काम महाराष्ट्र में हो रहा है, इसकी वजह से एक अट्रैक्शन है शिंदे साहब के बारे में, अट्रैक्शन है हमारी सरकार जो देवेंद्र जी के नेतृत्व में है महाराष्ट्र में बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। शिंदे साहब अच्छी तरह से उनको साथ दे रहे हैं, पवार मैडम साथ दे रहे हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट महाराष्ट्र में हो रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम में हर कोई शामिल होना चाहता है, तो ये लोग आ जाए तो बहुत अच्छा होगा।
2: ऑपरेशन टाइगर की चर्चा है और ऐसे में अपना घर बचाने के लिए एक मीटिंग होती है और उसमें 5 सांसद नदारद रहते हैं और उसके बाद घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: देखिए इसका मतलब तो आपको निकालना चाहिए, पार्टी चीफ मीटिंग बुलाते हैं और सांसद नहीं आए तो इससे आपको ही मतलब निकालना है।
3: ये देखिए ऑपरेशन टाइगर जो हो रहा है तो खुद ओबीटी की तरफ से ही हो रहा है, उसका ये कि सभी सांसद सभी विधायक ये ओबीटी के नेताओं का जो रवैया है, बार बार वो लोगों के ऊपर शक कर किया जाता है, बार बार वो लोगों के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं कि इनसे बात नहीं करना, इनसे नहीं मिलना, किसी के घर पे खाना का दावत भी आई तो उसके यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं जाना, तो इससे भी ये लोग बहुत तंग आ चुके हैं, तो इससे ये लोग बहुत नाराज है, बहुत बड़ा असंतोष ओबीटी के सभी सांसद और विधायकों में भी है।
4: कोई स्पेक्यूलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ऑपरेशन टाइगर नहीं ऑपरेशन प्रगति है, प्रगति के आधार पे हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने काम किया है ऑन ग्राउंड, हर दम वो देखते हैं कि कैसे कार्यकर्ता को फायदा हो, नेतागण और जनता को फायदा हो, और उस दृष्टि से पक्ष प्रवेश होता है हर एक दिन। कोई लातूर से आ रहा है, परभनी, अमरावती, अकोला, सोलापुर, कोल्हापुर, जलगांव, सभी जगह से लोग एकनाथ शिंदे जी के साथ और शिवसेना के साथ काम करना चाहते हैं, उस दृष्टि से आते हैं। संपर्क तो करेंगे ही क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं। ऑन ग्राउंड लीडर यानी कि डेडिकेटेड टू द कॉमन मैन एक नाम है तो वो है एकनाथ जी शिंदे।
5: कि आज की तारीख में जितने भी विपक्षी दल के जन प्रतिनिधि उनको अपना भविष्य अपने दलों में दिखता नहीं है, टीएमसी हो पुनः उद्धव जी की पार्टी में जिस तरीके से चल रहा, आम आदमी पार्टी हो, धीरे धीरे करके न जनप्रतिनिधियों का विश्वास अपने दलों में है न जनता का विश्वास अब उनमें रहा। देखिए ये बात सत्य है, मैंने कुछ दिन पहले एनडीए की बैठक में भी इस बात को मैंने कहा था कि 2029 में एक बार फिर से हम लोग मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं।
6: जब कुछ पारिवारिक पार्टियां लोगों को सम्मान की जगह पे मजबूर करने का काम करती है तो कभी ना कभी डर निकल जाता है। आखिर विचारों से बंधे हुए पार्टियों के लोक प्रतिनिधि जन प्रतिनिधि ये कभी बाहर नहीं जाते। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी 46 विधायकों के साथ थी, हमारे में से कोई विधायक ये पार्टी छोड़कर नहीं गए, तो पीछे ही अब देखो ना मेरे समय में टाइगर आया था तो अब हम जुड़े ही ना यहाँ पे आके, तो टाइगर टाइगर से ही जुड़ेगा और किसके साथ जुड़ेगा।
7: पूरे देश देख रहा है ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन टाइगर, अब ये तमाम ये वो जो लोग जा रहे हैं बीजेपी के अंदर, हाँ ये सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लिए, हमको गालियां बकते थे बी टीम बोलते बोलते आज सबके सब चले गए बीजेपी के पास और पूरे वोट लेके बीजेपी की झोली में डाल दिए। अब कौन बी टीम है, अब ये वहाँ चले गए, हाँ अब वहाँ जाके क्या करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाएंगे, अब मस्जिदों के नीचे जाके मंदिर ढूंढेंगे, और मेन तो पैसा है, पैसा बोलता है। तो देख लो ये जनता देख रही है ना कि जो लोग कल तक ये सेकुलरिज्म का बाजा बजा रहे थे, हमको गालियां बक रहे थे, अनाप शनाप बकवास बक रहे थे, आज चुनिंदा रुपयों के लिए अपना जमीर ईमान बेच डालते हैं। ये लोग के लिए जमीर ईमान धर्म कुछ नहीं है।
8: We'll check in more updates coming in at this hour. We have some big breaking news coming in as UBT Member of Parliament Sanjay Raut says, Apna Sapna Mani Mani. He's gone on to say that it's shocking and revolting that Maharashtra Member of Parliament are reportedly being offered rupees 15 crore each tonight to switch sides. That's what he's in fact gone on to say. We're learning that the Uddhav camp is going to brief media at about 9 a.m. today. Sanjay Raut, Anil Desai and Arvind Sawant are going to brief media on the defection of the Member of Parliament. Of course, rumours that are now swirling with regards to the defection that's going to

0: Sanjay Raut ji is in charge, and Arvind Sawant ji is in charge of our parliamentary affairs. He's our leader. I am not authorized to speak on it. They are our party leader. They will speak what is to be done. You can contact them.
1: एक बार फिर से ऑपरेशन टाइगर की खबर आप लोग तो सुन ही रहे होंगे। हमारे नेता अभी संजय राउत जी ने ट्वीट किया है कि 15-15 करोड़ रुपए में सांसद खरीदे और बेचे जा रहे हैं। बताइए, 2022 में ऐसे ही 20 जून को पार्टी तोड़ी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। हमने कहा है कि यह शिवसेना हमारी असली है, धनुष्बाण हमारा चुनाव चिन्ह है। अब तक उसका फैसला आया नहीं। तब तक 2026 में पुनः एक बार हमारी पार्टी तोड़ने की एक साजिश रची जा रही है। अब आप सोचिए कि 9 सांसद हमारे पास हैं, 2 साल से हैं, हमारे नाम पर जीत के आए, हमारे चुनाव चिन्ह पर, हमारे नेता के आशीर्वाद से चुनाव जीत के आए हैं, और अब पता चल रहा है कि सब दिल्ली रवाना हो रहे हैं।
2: एक बात बताइए, ये कहा जा रहा है कि अब बारी अगली शिवसेना की है, शिवसेना के 6 सांसद टूट के 7 सांसद टूट के वो एक नया गुट बना देंगे। कितनी बार तोड़ेंगे शिवसेना को?
3: ये आपके स्पेकुलेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
2: अच्छा, जहाँ जहाँ पार्टी टूट रही है ना, आप वहाँ वहाँ प्रभारी रहे, महाराष्ट्र में भी आप प्रभारी रहे, वहाँ शिवसेना टूट रही है, बंगाल में आप प्रभारी रहे, वहाँ TMC टूट रही है, इससे पहले भी आप कई राज्यों में प्रभारी रहे, वहाँ तो आपने सरकार बना ही दी, यहाँ तो सरकार बनाने के बाद अब विपक्ष पर आफत आ गई।
3: या हम सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं, जन समर्थन में विश्वास करते हैं। राजनीति का जो ध्येय है वो राजनीति का ध्येय भारत में राष्ट्रवादी विचार के साथ भारत को बड़ा बनाने का विषय है। हम अपने ध्येय पे काम करते हैं, बाकी नहीं।
4: बहुत अच्छा काम महाराष्ट्र में हो रहा है, इसकी वजह से एक अट्रैक्शन है, शिंदे साहब के बारे में अट्रैक्शन है। हमारी सरकार जो देवेंद्र जी के नेतृत्व में है, महाराष्ट्र में बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। शिंदे साहब अच्छी तरह से उनको साथ दे रहे हैं, पवार मैडम साथ दे रहे हैं, और बहुत सारे डेवलपमेंट महाराष्ट्र में हो रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम में हर कोई शामिल होना चाहता है, तो ये लोग आ जाए तो बहुत अच्छा होगा।
5: ऑपरेशन टाइगर की चर्चा है, और ऐसे में अपना घर बचाने के लिए एक मीटिंग होती है और उसमें 5 सांसद नदारद रहते हैं, और उसके बाद घटनाक्रम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
4: देखिए, इसका मतलब तो आपको निकालना चाहिए। पार्टी चीफ मीटिंग बुलाते हैं और सांसद नहीं आए, तो इससे आपको ही मतलब निकालना है।
6: ऑपरेशन प्रगति यशस्वी। जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है, और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है।
7: मुझे अफसोस है, मेरे देश के नेता इतने दुर्बल, इतने कमजोर, इतने लालची हो गए हैं कि अपनी आइडियोलॉजी छोड़ करके लालच में, डर में पार्टी छोड़ रहे हैं। गांधी जी की अगर आत्मा नाम की कोई चीज़ होगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर आत्मा नाम की कोई चीज़ होगी, तो आज खून के आंसू रोती होगी कि मैंने जिस देश का संविधान बनाया, मैंने जिस देश के लिए अपनी जान दिया, उस देश में आज खरीद फरोख्त पे और डरा करके लोगों को की पार्टियाँ चेंज की जा रही हैं।
8: टुडे द BJP एंड इट्स अलायंस पार्टनर शुड फोकस लेस ऑन हॉर्स ट्रेडिंग एंड मोर ऑन द इकोनॉमी। दे शुड फोकस ऑन जॉब्स, दे शुड फोकस ऑन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, दे शुड फोकस ऑन FII आउटफ्लोज। हाउ मेनी MPs इज इनफ MPs फॉर द BJP राइट नाउ? अब की बार 500 पार ही कर दो, बिकॉज एट दिस पॉइंट द फोकस हैज नॉट बीन ऑन गवर्नेंस, द फोकस हैज ओनली बीन ऑन बाइंग MPs।
9: ऑलराइट, यू नो द स्पेक्यूलेशन अराउंड अ पॉसिबल रिबेलियन विद इन द उद्धव ठाकरे कैंप हैज मूव फ्रॉम पॉलिटिकल गॉसिप टू अ स्टोरी दैट नाउ डिमांड्स क्लोजर अटेंशन। You see, the immediate trigger is a claim made by Shinde Sena MLC Krupal Tumane, who says 7 MPs from the Uddhav faction are set to join the Eknath Shinde-led Shiv Sena. Separately, sources have told NDTV that between 14 and 16 MLAs could also be considering their future in that party. And as of this moment, there has been no official announcement by any MP or MLA that they are indeed leaving the Uddhav camp. Nor has any formal split been recognized by parliamentary or legislative authorities. As you know, there is a letter that's already been submitted by Mr. Sawant to the Lok Sabha Speaker. But as many assert, politics is often about signals before decisions. You see, the reports of meetings in Delhi, the difficulty senior Uddhav Sena leaders reportedly faced in reaching some MPs, and the unusually public confidence being displayed by the Shinde camp, they have all added to this current buzz. For Uddhav Thackeray, we have to note that the stakes are particularly high. After the 2022 split, his party retained a political identity, a voter base and a parliamentary presence, despite losing

0: only just before his very important press conference. Also, let me show you these pictures of this press conference as well. This is also very much important. And also, let us talk about what Sanjay Raut has spoken while speaking exclusively to NDTV. He has stated that Uddhav Thackeray has worked a lot for every MP and has stood every time for them. And the rebels will not get the numbers they want, and they will keep on struggling for numbers. This they have been doing since long, but still the MPs have been standing strong with Uddhav Balasaheb Thackeray. All eyes on this press conference. We'll be getting you all the updates from the ground zero.
1: Right, stay on with us as we talk about the speculations doing the rounds as far as Operation Tiger that continues to be in motion with Eknath Shinde's camp claiming that as many as 6 of the 9 Uddhav Thackeray camp MPs could possibly be switching sides. Amid the reports, a parliamentary party meeting of the Shiv Sena UBT has been called in the parliament. And all MPs have been asked to come for the meeting. Let's get.
2: Call आपको आया था क्योंकि एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पर हैं और बताया जा रहा है कि आपके जो पहले सहयोगी हुआ करते थे वो भी यहाँ पर हैं और संभावित है कि लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात होनी है.
3: मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं.
2: आपको कॉल आया था एक?
3: नहीं, किसी का नहीं है. शिंदे साहब का भी नहीं है और कोई मुझे कॉन्टेक्ट किया नहीं.
2: लेकिन यदि शिंदे साहब की तरफ से कोई अपील आती है तो क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे?
3: नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ अपील मेरे लिए नहीं करेंगे क्योंकि आगे करना होता तो इसके पहले कर चुके होते. लेकिन मेरे से किसी की बात हुई नहीं है. मैं आदरणीय उद्धव जी के साथ हूँ, रहूँगा और रहने वाला.
2: दो दिन पहले जो है उद्धव जी ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी. कुछ लोग पहुँचे, कुछ नहीं पहुँचे. उसी दिन ये साफ हो गया था कि कुछ लोग संपर्क में हैं. उद्धव जी ने उस बैठक में बोला क्या था?
3: नहीं, कुछ नहीं. वैसे तो 4 फिजिकली वो बैठक में थे और 5 लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उद्धव जी से बात की थी.
2: एक सवाल ये भी है ना सर कि क्या ये जो सांसद जो टूट करके जाने की जिनकी चर्चा भी हो रही है, इनके पास इनफ नंबर्स हैं? क्योंकि अभी अरविंद सावंत जी जो हैं वो व्हिप भी उन्होंने जारी कर दिया है, पार्टी की बैठक भी बुलाई है, तो आप उसमें भी शामिल होंगे, तो क्या
3: मुझे कुछ मालूम नहीं अभी तक. मैं अभी आप देख रहे हैं कि आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप ट्रेन में ही कर रहे हैं. मैं अभी तक ट्रेन से उतरा भी नहीं हूँ. हाँ. अभी मुझे क्या मालूम है, नेटवर्क तो नहीं है ट्रेन में.
2: इसकी गारंटी आप दे रहे हैं कि आप एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाएंगे?
3: मैं पहले बहुत बार कह चुका हूँ कि मैं पहले दिन से उद्धव जी के साथ हूँ, कल भी रहूंगा. बस
2: तो एकनाथ शिंदे जी ने संपर्क नहीं किया आपसे?
3: मेरे से संपर्क किसी का नहीं हुआ है.
2: अच्छा, बाकी सारे लोग तो के ऊपर क्लेम है कि उनका संपर्क हुआ, आपको क्यों छोड़ दिया उन्होंने?
3: मुझे क्या मालूम, उनको पूछना चाहिए, आप उनसे जाके पूछ लो.
2: अगर कॉल आएगा तो आप जाएंगे, बात करेंगे?
3: नहीं, बात करने की अभी ये हालत में बात करने की क्या जरूरत है? अभी मैं तो साहब के साथ हूँ तो मैं उनके साथ रहूंगा.
2: संजय राउत क्लेम कर रहे हैं 15 करोड़ जो है वो ऑफर किए गए. आपको कितने करोड़ का ऑफर आया था?
3: मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि मेरे से कोई बात ही नहीं हुई तो 15 करोड़ कहाँ गए उधर? मेरे से बात ही नहीं हुई है.
2: जो लोग छोड़ करके जाने की इच्छा रख रहे हैं या जाने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है?
3: मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ. उद्धव जी उनसे बात करेंगे, अगर कुछ कहना है तो वो कहेंगे, मैं क्या करूँ.
2: क्या पार्टी में नाराजगी थी?
3: नहीं, मैं तो नाराज नहीं हूँ. मैं तो अभी यहाँ हूँ और उनके साथ ही रहूंगा.
2: सर, थोड़ी क्या मराठी करूया. सर, तुम्ही इथं आला आहात, मुंबई वरन नाशिक वरन दिल्ली आला आहात, काय उद्देश आहे? म्हटलं जात आहे की
4: करंटली इन दिल्ली.
5: No, I'm in Mumbai.
4: Okay. And sir, what will you say about the speculations that everyone is in touch with?
5: Tired of the press and tired of all the speculations.
4: Okay.
5: What if something is to happen, it will happen. What is you and me?
4: Right.
5: Just wasting our time is no point.
4: No, sir. Yeah. Clearly you have a point. That Eknath Shinde is in Delhi and there are sources say that they are going to meet all the rebel MPs from Shiv Sena UBT.
5: I've got no news about it. I'm tired of all the media calls.
4: So sir, can we say that not all MPs are in touch with Shiv Sena and yes.
5: Yeah.
4: But sir, as an MP, it's being told that you guys are unhappy with Uddhav Thackeray and his functioning. What will you comment on that?
5: Is any human happy with anything?
4: Right.
5: General human tendency to be not happy.

0: राजा भाऊ वाजे बोलता है सर, मी तेजश्री बोलते हैं एनडीटीवी वरून। सर बहुत सारे स्पेक्युलेशन चल रहे हैं, देर आर लॉट ऑफ न्यूज एंड स्टोरीज कमिंग इन दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू जॉइन टूडे एंड यू आर गोइंग टू मीट लोकसभा स्पीकर एंड यू आर गोइंग टू मर्ज विद एकनाथ शिंदे फैक्शन।
1: आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट
0: सो, बट इज इट करेक्ट कि आप जाने वाले हैं?
1: मैं दिल्ली जा रहा हूँ मैडम, मैं मेरा का मीटिंग है, कोई मैं 3 बजे आज मीटिंग है, मैं वो मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं अभी रेलवे में हूँ, ट्रेन में हूँ।
0: लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि आप लोग सब इनकम्युनिकेट हो गए, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, और आप लोग रात को मिले और आपकी बात भी हुई रात को एकनाथ शिंदे से। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर संजय राउत जी कह रहे हैं कि आप लोग नहीं जाएंगे, वहाँ पर एकनाथ शिंदे कह रहे, एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो कह रहे हैं आप लोग आ रहे हैं, 7 आंकड़ा दे रहे हैं और उसमें आपका भी नाम है। तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं क्या? आप पार्टी नहीं बदल रहे हैं अपनी?
1: मैं पुणे में हूँ, पुणे में।
2: अच्छा, पुणे में ही है। तो ये जो मीटिंग की बात चल रही है सर, उसमें आप दिल्ली आएंगे या अभी वहीं रहेंगे आप?
1: नहीं, मेरे को नहीं पता चल रहा है कि मेरा नाम क्यों चला रहे हैं आप सब लोग।
2: अच्छा, तो आप
1: पुणे में ही?
2: आप पुणे में ही है। आप उद्धव,
1: मैं आपके माध्यम से ही मैं जान पा रहा हूँ कि 2 MP आए, 3 MP आए, मैं तो पुणे।
2: अच्छा, आप पुणे में ही?
1: आपकी वजह से क्या हुआ पता भी नहीं चल रहा, कौन सा न्यूज सही है और कौन सा गलत है, न्यूज चला रहे।
2: तो सर अभी आपका क्लियरिटी क्या है, आप उद्धव के साथ ही हैं या आपका जो लिस्ट में नाम आ रहा है वो सही है?
1: अभी फिलहाल मेरे पिताजी का जो मर्डर केस है जी, उसका डिसीजन आने वाला है 20 तारीख को, तो उसके इसमें हूँ मैं।
2: अच्छा, लेकिन पार्टी के साथ ही है अभी या?
3: एक बार फिर से ऑपरेशन टाइगर की खबर आप लोग तो सुन ही रहे होंगे। हमारे नेता अभी संजय राउत जी ने ट्वीट किया है कि 15-15 करोड़ रुपए में सांसद खरीदे और बेचे जा रहे हैं। बताइए, 2022 में ऐसे ही 20 जून को पार्टी तोड़ी गई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। हमने कहा है कि यह शिवसेना हमारी असली है, धनुष्बाण हमारा चुनाव चिन्ह है, अब तक उसका फैसला आया नहीं। तब तक 2026 में पुनः एक बार हमारी पार्टी तोड़ने की एक साजिश रची जा रही है। अब आप सोचिए कि 9 सांसद हमारे पास हैं, 2 साल से हैं, हमारे नाम पर जीत के आए, हमारे चुनाव चिन्ह पर, हमारे नेता के आशीर्वाद से चुनाव जीत के आए हैं, और अब पता चल रहा है कि सब दिल्ली रवाना हो रहे हैं।
4: Talking about the 6 Uddhav Thackeray faction of the Shiv Sena MPs who are likely to be switching sides, and that includes Sanjay Dina Patil, we have Sanjay Deshmukh and Nagesh Patil, we also have Ashtikar Om Raje, well, also Bhau Sahe, who we just heard, talking about, of course, as far as the situation that's unfolding, and also Sanjay Jadhav there. So these are the people there, of course, who are expected, the 6 MPs who are expected to be switching sides. To know more on this, we have Tejshree, my colleague, joining us from right outside Sanjay Rao's residence in the national capital. Tejshree, when we talk about what is really being said by the loyalists, the supporters of Uddhav Thackeray, they are saying this is, Balasaheb Thackeray's ideology, and that is something that the people are committed to and they're not going to really be switching sides. On the other side, Sanjay Raut is also making claims of the mount that's being offered to them, the plane that they've been taken in and all that's to be followed. What can, in fact, Uddhav Thackeray do at this very point in time to save his party?
0: Well, Uddhav Thackeray's legal team is all in action. They are exploring all options so as to what action needs to be taken next on all these rebel MPs if they go today at the residence of Lok Sabha Speaker Om Birla, number one. Number two, he has called for the parliamentary party meeting tomorrow at 11 a.m. at here in the national capital. Now, remains to be seen that how many MPs do join in the meeting, because total number is 9 what they have. Now, out of these 9, will 4 be joining or will 5 be joining? That is very much important to see, because remember that earlier also there was a meeting couple of days back where these MPs were called for a meeting by Uddhav at the residence of Uddhav Thackeray, and then what we got to know is there were lots of speculations that 5 MPs were not present in the meeting, 4 MPs were not present in the meeting, such kind of numbers were coming out. But then Sanjay Raut clarified that all these MPs who were not present physically in the meeting, they had joined.

0: Let's cut across to a press conference being held by Sanjay Raut of the Uddhav Thackeray Shiv Sena faction, saying that Operation Tiger is not easy and our leaders were offered 50 crores.
1: Arvind Sawant ji ne aur Anil Desai ji ne grip jari kiya. Kal hamari parliamentary vote meeting hai dal ki 11 baje. Om Birla ji ko bhi hamare Arvind Sawant ji ne letter likha hai. Wo bhi aap samajh lijiye. Aur hum aap Delhi mein hai aur Delhi mein rahenge. Arvind ji aap zara bataiye.
2: पहली बात तो आदरणीय
3: वी आर इन दिल्ली एंड विल रिमेन इन दिल्ली.
1: देखिए अभी तक तो मैं मानता हूँ सब
3: क्या
1: हमारा दल एक कोई किस प्रकार का किसी ने लेटर दिया है या नहीं दिया है.
3: सो फार आई बिलीव दैट ग्रुप इज वन.
1: लेकिन
3: whether anybody has given or not given the letter, we have got to know from you. On 14th June, we had a meeting at the residence of Uddhav Thackeray Matoshri. Where?
1: तो सभी ने उस वक्त कहा दो दिन पहले भाई हम लोग पार्टी के साथ ही हैं.
3: The MPs said that we are with the party.
1: और उसमें से एक
3: we are not going anywhere after leaving you.
1: एक ने माता भवानी की
3: and one of the MPs took oath in the name of Sai Baba.
1: बेटी की शपथ.
3: Another one took name in the oath took oath in the name of माँ भवानी.
1: माँ की शपथ. और उसके बावजूद अगर कोई
3: somebody took oath in the name of his mother.
1: लेकर भी कोई शिवसेना जैसे अपने माँ से बेईमान नहीं करना चाहते. शिवसेना माँ है हम सब.
3: Shivsena is like mother to all of us.
1: ये सब लोग शिवसेना पार्टी के मशाल चिन्ह के ऊपर चुनकर आए. उद्धव बाला साहेब ठाकरे ये पार्टी है. मोदी जी के चेहरे पर नहीं या शिंदे जी के चेहरे पर नहीं सुनकर आए हैं. ये उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी और बाला साहेब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है. अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए 15-15 करोड़ कल रात को दिया. पैसा पहुंच गया ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है. और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे. पहले पैसा हाथ में दे दो. वो पैसा लिया है लोगों ने और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया. नांदेड़ से पुणे से तीन जगह से चार्टर फ्लाइट छोड़े.
4: और कितने लोगों को दिया गया?
1: वो आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा. तो अभी अभी कल हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है. हमने सबको व्हिप दिया है
4: जारी किया है
1: अरविंद जी ने और अनिल जी ने. और कल 11 बजे हमारी मीटिंग है. मीटिंग के बाद हम तय करेंगे. लोकसभा स्पीकर को पार्टी के तरफ से एक खत लिखा है अरविंद जी ने. गट नेता है तो उनके बाद हम देखेंगे. अरविंद जी जरा बताइए.
5: एकनाथ शिंदे दिल्लीत आहे आणि हे सहाही खासदार दिल्लीत असल्याची माहिती मिळते.
1: खरं म्हणजे आता तुम्ही जरा अरविंद सावंत काय म्हणताय किंवा अनिल देसाई काय म्हणतात ते समजून घ्या. खरं म्हणजे राजाभाऊ वाजेंचं खास कौतुक आणि अभिनंदन केलं पाहिजे. ते पहिला दिवसापासून एकच सांगतायत की मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बरोबर आहे. आता ते ट्रेनमधनं उतरले राजधानी एक्सप्रेसमधून. मीडिया त्यांच्या कंपार्टमेंटमध्ये घुसला तिथे त्यांचं तेच वाक्य होतं. याला आम्ही निष्ठा म्हणतो श्रद्धा म्हणतो. अहो खासदार का आमदार का इथं आणि जातात. आज आम्ही खासदारात उद्या नसू पण या पक्षाने आम्हाला आतापर्यंत जे दिलेलं आहे ते आम्हाला विसरता येणार नाही. बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना. उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्य

0: मुलांना भावासारखं प्रेम केलं हे साले भोसडीचे लोक बोलतात काय हे नाही डोंट कट कट मत कर हा ये लोग जो है बेईमान लोग है ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा
1: नहीं राऊसाहेब एकनाथ शिंदे दिल्ली मध्ये आहेत आणि हे सहा खासदारही दिल्लीत आहेत असं कळतंय। ओम बिर्ला लोकसभा अध्यक्ष यांची भेट घेतली जाईल आणि शक्यता अमित शहा यांची भेट
0: बघा सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सुप्रीम कोर्ट निवडणूक आयोग लोकसभा अध्यक्ष यांची काय हैसियत आपल्याला माहित आहे।
2: या संदर्भातलं एक सांगणं आवश्यक आहे की बात ऐसी आहे की आदरणीय हमारे संजय राऊत साहब ने सारी बातें बताई हैं। अब रहा मुद्दा आप जानते हो कि शिवसेना पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस जारी है आज तक चल रहे हमारे अनिल देसाई उसमें ज्यादा बात करेंगे उसके ऊपर। बात ऐसी है कि ये सारी जो चीजें चल रही है कोई तो हमसे मिलकर या आदरणीय उद्धव साहब से मिलकर तो कुछ नहीं कर रहा या आपके माध्यम से हमारे पास खबरें आ रही है किसी ने भी नहीं कहा जो अभी उन्होंने जिक्र की कि 14 तारीख को जो मीटिंग हुई हम तो 4 तो मौजूद ही थे वहां पांचवे हमारे ये खुद राज्यसभा के सांसद थे तो वो भी वहां हमारे नेतागण के उपस्थित थे बाकी 4 लोग हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस में किसी ने नहीं कहा। अब ये मीडिया में जो बात फैलावी जैसे इन्होंने कहा 6 लोग आ गए तो हमारे पीछे लगने से पहले 6 लोगों की तस्वीर तो बताओ जाओ किधर है वो ढूंढ के तो बताओ कहां 6 लोग हैं हम तो सामने खड़े बैठे हैं। लेकिन ये झूठ जो चल रहा है उसके ऊपर हमें फिर सावधानी बरती है क्योंकि पिछली बार हमने कल भी हमारे आदरणीय आदित्य जी ठाकरे युवा नेता ने कहा कि हम पूरे विश्वास के साथ चलते हैं हमारा आज भी विश्वास है हमारे सांसद सब हमारे साथ है किसी ने भी हिम्मत करके नहीं कहा कि हम छोड़ रहे हैं। लेकिन जो बातें चल रही है उसको देखकर थोड़ी सावधानी बरतने की बात है क्योंकि कानूनन जो व्यवस्था है संविधान के तहत जो जो आर्टिकल 10 है उसके तहत कल भी जो तृणमूल के साथ में हुआ है वो देखकर लग रहा है कि बराबर ये सही नहीं चल रहा है। पार्टी विलीन होना है व्यक्ति नहीं विलीन होता है न ग्रुप विलीन होता है उसके ऊपर भी एक बहस चल रही है हमारी पार्टी वहां पर है। अब रही बात इसके बारे में हमने आदरणीय हमारे ओम बिरला जी जो अध्यक्ष है हमारे लोकसभा के उनकी पहले एक चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में लिखा है जो कुछ भी होगा वो संविधान के तहत जो कलम है ऐसे कोई भी आएगा किसी ने आपके सामने स्वाक्षरी की है कि भाई जा रहा हूं या तो सामने खड़ा है वो तो बताओ। ये जो बाजार चल रहा है पूरे देश में संविधान की धज्जी रोजाना उड़ाई जा रही है लोग जनतंत्र में बाजार बना के रखा है पूरे देश में देखो कहीं से भी कोई खरीद लेता है कल इल्जाम लगा रहे हो आप कि भ्रष्टाचारी है और दूसरे दिन उसको आप मुख्यमंत्री बनाते हो तो आप लोगों को भी लगनी चाहिए चौथे स्तंभ को भी कि आपकी ताकत क्या रही आपकी ताकत क्या रही इतना संविधान से खिलवाड़ जो प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं ऐसा कह रहे नहीं लगा रहे प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया ये भ्रष्टाचारी है उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया बिस्वा वो आसाम में उसको भी आपने भ्रष्टाचारी कहा। ये जो व्यभिचार है जो व्यभिचार जो चल रहा है ना उस व्यभिचार के कुछ यहाँ जो झिलप रहा है यहाँ थोड़ा सा तो उसको जब खबर लेनी चाहिए वो हमने खबर ले लिया और उसके तहत हमने आदरणीय ओम बिरला जी से पूरे संविधान की रक्षा करने के बारे में तो उस चिट्ठी में लिखा है कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा तो नहीं चलेगा पार्टी पार्टी है कोई सांसद मतलब पार्टी नहीं कोई विधायक मतलब पार्टी नहीं पार्टी सांसद विधायक के बावजूद भी पार्टी के केडर से बनती है और वो पार्टी के तहत आज जो कुछ है हमने अब तक किसी का हमें फोन नहीं है ना किसी ने कहा कि हम जा रहे हैं ना किसी ने ऐसी खबर दी है इसने कल अभी जैसे आदरणीय राउत साहब ने कहा कि कल हमने पार्टी की मीटिंग रखी तो हमने उसका व्हीप भी जारी कर दिया
1: अनुपस्थित राहतात पण दुसऱ्या दिवशी ते दिल्लीत येतात आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना भेटतात
2: हे बघा आम्ही विश्वासावर चालतो असं आदित्य ठाकरेंचं वाक्य मी आताच्या 2 मिनिटापूर्वी सांगितलं त्यांनी सांगितलं माझ्या मुलीचा विवाह जमलेला आहे पाहुणे घरी येणार आहेत आता म्हणून मी आलो नाही पण ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बोलले ना साहेबाची समोर बोलले आमच्या समोर बोलले की आमच्या मागे नाही बोलले आम्ही सगळे साक्ष होतो त्या व्हिडिओ कॉन्फरन्स झाल्याची बोलले. त्याच्या पलीकडे आम्हाला माहिती
0: नाही. आता
1: तसं काय घडतं
0: उसमें जो लीगल
1: येऊ शकत नाही, पण ते दिल्लीत येतात आणि केंद्रीय मंत्र्यांना
0: सांगतो ना सांगतो

0: क्या आपने स्पीकर से मिलने का समय मांगा है?
1: और क्या
2: अभी
3: स्पीकर के यहाँ
2: से नहीं अमीर जैसा की बात करें
4: मैं बोल रहा हूँ
5: सांसदों के साथ में भी बात हुई। सांसदों के साथ जब बात होती है तो कहते हैं हम आप ही के साथ हैं। जैसे पिछली बार जो मीटिंग हुई 14 तारीख को उसमें आदरणीय संजय जी ने और अरविंद सावंत जी ने कहा उस तरह से सब बातें आपके सामने हैं। सांसद किस तरह से मूव कर रहे हैं या उनको कौन मूव कर रहा है और ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके पास में उस तरह का उनका गुट के साथ जाना या जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया इस तरह से ना हो उस प्रक्रिया को कोई चालना ना मिले इसलिए जो एक प्रावधान है उस प्रावधान के तहत लोकसभा अध्यक्ष को अरविंद जी के लोकसभा लीडर रहने के तहत शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के तरफ से हमने एक ज्ञापन उनको दिया है वी हैव गिवन देम द मेमोरेंडम और उसी के तरह शिवसेना संसदीय शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की संसदीय दल की बैठक कल 18 तारीख को संसद भवन में संसदीय भवन में जहां पे हमारा पार्टी का संसदीय दल का जो कार्यालय है उसमें ये बैठक होती है और ये सब इसलिए नहीं कि हमको उनके ऊपर भरोसा नहीं है। भरोसा जरूर है क्योंकि उन्होंने अब तक उसका खंडन नहीं किया है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन सुनिए तो सही ये तो जो संजय राउत जी कह रहे हैं ये आप ही के द्वारा मीडिया के तरफ से ही आ रहा है मीडिया के तरफ से आ रहा है सोशल मीडिया के तरफ से आ रहा है जो बयान से कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि वो इस तरह से खुद उसके ऊपर ये नहीं जोर नहीं दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये सब बातें आ रही है तो ये करने का जो प्रावधान है जो कायदे कानून से हमको करना है लीगल स्टेप्स जिसको कहते हैं एक कैवियट के तरह एक सावधानी बरतने के लिए कि भाई हमारे सांसद हमारे साथ ही में है ये आज तक का हमारा अपना भी विश्वास है साहब उद्धव जी का भी विश्वास है और यहां बैठे सभी का है।
2: देखो हमने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया है और किसी सांसद का नाम नहीं लिया है। ये जो एक पूरे देश में जिस तरह से चुने हुए लोगों को खरीदना और तोड़ने का जो एक प्रोसेस चल रहा है ये लोकतंत्र के खिलाफ है डेमोक्रेसी और संविधान के खिलाफ है। ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर है नियम और कानून और संविधान का पालन करके निर्णय लेना चाहिए जो उसके पहले नहीं लिया गया है ये हमारा कहना है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक हमारे एसएलपी पेंडिंग है 4 साल हो गए अजी बात नहीं यार सुप्रीम कोर्ट तेवढंच जबाबदार आहे। आता दबाव कशा प्रकारे येतात तुम्हाला मी सांगतो दबाव खासदारांवरती दबाव कशा प्रकारे येतात। आता ओम राजे निंबाळकर त्यांचं नाव त्या यादीमध्ये मी वाचलं आपण दिलं 20 वर्षापूर्वी त्यांच्या वडिलांची हत्या झाली 20 वर्षापूर्वी पवनराजे निंबाळकर यांची हत्या झाली आणि 20 वर्ष तो खटला सुरू आहे। काल निकाल होता काल निकालाचा दिवस ठरला जजमेंट डे
5: मुंबई हायकोर्टात।
2: आता आमच्यापर्यंत अशी माहिती आली की पवनराजे निंबाळकरांवरती दबाव असा आहे आपलं ओमराजेवरती तुमच्या बाजूने निकाल हवा असेल तर आमच्या गटामध्ये सामील व्हा आम्ही तुम्हाला हवा तसा निकाल देतो। काय ऐकून घ्या परत एका खुनाचा निकाल आहे दोन खून आहेत पवनराजे आणि त्यांचा ड्रायव्हर हा मुस्लिम ड्रायव्हर आहे 20 साल बाद फैसले की घड़ी कल आ गई 20 साल बाद और पवन राजे को बताया गया अगर तुम्हारे ओम राजे को बताया गया एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के माध्यम से जो नेता दिल्ली में आया है कहा गया कि अगर तुम फैसला अपने पक्ष में अपने हक में चाहते हो तो सिग्नेचर करो और हमारे साथ आ जाओ। इस प्रकार से अगर इस देश का कानून चलता है और डेमोक्रेसी चलती है तो क्या संविधान क्या कानून क्या सुप्रीम कोर्ट क्या हाईकोर्ट अब बताइए। तो इसीलिए 2 दिन वो फैसला रुक गया आगे ढकल

0: नहीं कुछ नहीं, वैसे तो चार फिजिकली वो बैठक में थे और पांच लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उद्धव जी से बात की थी।
1: एक सवाल ये भी है ना सर, कि क्या ये जो सांसद जो टूट करके जाने की जिनकी चर्चा भी हो रही है, ये इनके पास इनफ नंबर्स हैं? क्योंकि अभी अरविंद सावंत जी जो हैं वो व्हिप भी उन्होंने जारी कर दिया है, पार्टी की बैठक भी बुलाई है, तो आप उसमें भी शामिल होंगे, तो क्या
0: मुझे कुछ मालूम नहीं अभी तक। मैं अभी आप देख रहे हैं कि आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप ट्रेन में ही कर रहे हैं, मैं अभी तक ट्रेन से उतरा भी नहीं हूँ। हाँ। अभी मुझे क्या मालूम है, नेटवर्क तो नहीं है ट्रेन में।
1: इसकी गारंटी आप दे रहे हैं कि आप एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाएंगे?
0: मैं पहले बहुत बार कह चुका हूं कि मैं पहले दिन से उद्धव जी के साथ हूं, कल भी रहूंगा, बस।
1: तो एकनाथ शिंदे जी ने संपर्क नहीं किया आपसे?
0: मेरे से संपर्क किसी का नहीं हुआ है।
1: अच्छा, बाकी सारे लोग तो के ऊपर क्लेम है कि उनका संपर्क हुआ, आपको क्यों छोड़ दिया उन्होंने?
0: मुझे क्या मालूम, उनको पूछना चाहिए, आप उनसे जाके पूछ लो।
1: अगर कॉल आएगा तो आप जाएंगे, बात करेंगे?
0: नहीं, बात करने की अभी ये हालत में बात करने की क्या जरूरत है, अभी मैं तो साहब के साथ हूँ तो मैं उनके साथ रहूंगा।
1: संजय राउत क्लेम कर रहे हैं 15 करोड़ जो है वो ऑफर किए गए, आपको कितने करोड़ का ऑफर आया था?
0: मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि मेरे से कुछ बात ही नहीं हुई तो 15 करोड़ कहाँ गए उधर, मेरे से बात ही नहीं हुई।
1: जो लोग छोड़ करके जाने की इच्छा रख रहे हैं या जाने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है?
0: मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, उद्धव जी उनसे बात करेंगे, अगर कुछ कहना है तो वो कहेंगे, मैं क्या करूँ।
1: क्या पार्टी में नाराजगी थी?
0: नहीं, मैं तो नाराज नहीं हूँ, मैं तो अभी यहाँ हूँ और उनके साथ ही रहूंगा।
1: सर थोड़ी क्या मराठी करूया, सर तुम्ही इतना आला आहात मुंबई वरन नाशिक वरन दिल्ली आला आहात, काय उद्देश आहे? म्हटलं जात आहे की
2: currently in Delhi?
3: No, I'm in Mumbai.
2: Okay. And sir, what will you say about the speculations that everyone is in touch with?
3: Tired of the press and tired of all the speculations.
2: Okay.
3: What if something is to happen, it will happen. What is you and me?
2: Right.
3: Just wasting our time is no point.
2: No, sir. Yeah. Clearly you have a point. That Eknath Shinde is in Delhi and there are sources say that they are going to meet all the rebel MPs from Shiv Sena UBT.
3: I've got no news about it. I'm tired of all the media calls.
2: So sir, can we say that not all MPs are in touch with Shiv Sena and yes.
3: Yeah.
4: A very good afternoon. You're watching Breaking Ground. I'm Divya Vaza. This is NDTV 24/7. It's Ajay Raut of the Uddhav Thackeray faction of the Shiv Sena has gone ahead and made allegations that the MPs of the Uddhav Thackeray faction are being offered 50 crore rupees and 15 of those crore rupees are being offered in advance. We're going to get you all those details. First, the headlines. It's the Thackeray staring at a split, with the sources telling NDTV that it is Eknath Shinde meeting with the 6 Uddhav Thackeray MPs, the rebel MPs here in Delhi, that meeting that took place late last night. And it is the Uddhav Sena split 2.0 that is loading with claims being made of the people and the grievances that they have with their leadership. Uddhav Thackeray loyalist Sanjay Raut, Anil Desai hold a key briefing claiming that it's MPs that are still loyal to Uddhav Thackeray, claiming that the UBT MPs are being offered 50 crores to switch sides, 15 crores being paid in advance. Operation Tiger in full swing, with Shinde's legal team reaching Delhi. The paperwork is underway and Uddhav Thackeray too seeks legal opinion, and this is mulling over action against those very rebel MPs. And the RSS office has been attacked in Jharkhand. Petrol bombs have been thrown, one exploded and one failed to detonate. The suspects then managed to flee from the spot. And as the Modi-Trump bilateral that's going to be taking place after 16 months, they did meet. They had, they shook hands, but they did not hug. But this is coming about in the backdrop of the 3 Indian sailors who have been killed. Trump says that the Strait of Hormuz will remain toll-free, but Iran is disputing that claim, says that it can charge fees for maritime services. Israel, on their side, is saying it's very risky to have any sort of deal with Iran. And Messi ties an all-time World Cup scoring record with hat-trick against Algeria, and this is a historic goal that puts Messi alongside Ronaldo.

0: As an MP, there are just being told that you guys are unhappy with Uddhav Thackeray and his functioning. What will you comment on that?
1: Is any human happy with anything?
0: Right.
1: General human tendency to be not happy.
2: मैं पुणे में।
3: अच्छा पुणे में ही है। तो ये जो मीटिंग की बात चल रही है सर, उसमें आप दिल्ली आएंगे या अभी वहीं रहेंगे आप?
2: नहीं, मेरे को नहीं पता चल रहा है कि मेरा नाम क्यों चला रहा है आप सब लोग।
3: अच्छा तो आप
2: पुणे में है।
3: आप पुणे में ही है। आप उद्धव,
2: मैं आपके माध्यम से ही मैं जान पा रहा हूँ कि दो एमपी आए, तीन एमपी आए, मैं तो हूँ पुणे।
3: अच्छा आप पुणे में ही?
2: आपकी वजह से क्या हुआ पता भी नहीं चल रहा, कौन सा न्यूज सही है और कौन सा गलत है, न्यूज चला रही हुई।
3: तो सर अभी आपका क्लियरिटी क्या है, आप उद्धव के साथ ही हैं या आपका जो लिस्ट में नाम आ रहा है वो सही है?
2: अभी फिलहाल मेरे पिताजी का जो मर्डर केस है
3: जी,
2: उसका डिसीजन आने वाला है 20 तारीख को, तो उसके इसमें हूँ मैं।
3: अच्छा, लेकिन पार्टी के साथ ही है अभी या?
4: Let's just get you more political reactions coming about. What is the Shiv Sena really saying on the matter? Listen in.
5: जो शिवसेना के जो रिबेल में हैं, जो यूबीटी सेना के जो भी पार्टी स्विच करने की इनकी बात चल रही है आपके साथ?
6: अच्छा, अभी कहाँ दिख रहे हैं तुम?
5: सर वो कह रहे हैं कि दिल्ली भी आए हुए, एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे के घर पे मिलेंगे भी। और
6: मुझे कुछ भी मालूम नहीं है उसके बारे में।
5: सर ये संजय राउत जी ने ये भी बोल दिया कि 15 करोड़ दिए जा रहे हैं इनको पार्टी स्विच करने के लिए।
6: संजय राउत तो रोज अलग अलग बातें कह रहे हैं ना, कल रात को 15 करोड़ बोला, आज कुछ 50 करोड़ बोल रहा है।
5: ऐसी सर फिर आप कह रहे हैं कि कोई टॉक्स ही नहीं हो रही है?
6: उसे तो कुछ मालूम नहीं इसके बारे में, ऐसी तो 2 साल से ये खबरें आ रही है कि बाबा ये लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ मालूम नहीं इसके बारे में।
5: सर फिर वो जो ऑपरेशन टाइगर की रूमर्स हैं उस पर आप क्या कहेंगे?
6: वो तो 2 साल से चल रहा है ना, रोज न्यूज में आ रहा है, हुआ क्या अभी तक? नहीं हुआ ना।
5: अच्छा, ये भी सर फिर आ रही थी न्यूज की उद्धव ठाकरे की लीडरशिप से?
6: नहीं, ऐसे ही वही रहेंगे वो, संजय राउत और अरविंद सावंत को मालूम जो कुछ सुबह से चालू है।
5: अच्छा, आपकी भी इंटरनल कोई डिस्कशन इसके बारे में नहीं हो रही है?
6: नहीं, इंटरनल डिस्कशन कुछ भी नहीं।
5: तो जो दिल्ली की मीटिंग्स हैं जो सारे यहाँ पे आए हुए हैं?
6: नहीं, कुछ भी मालूम नहीं इसके बारे में।
5: अच्छा, तो मौजूद है किसी पे भी कोई अभी बातचीत आपके साथ?
6: नहीं, कुछ भी नहीं, तो 2 साल से चल रहे हैं ना, 1.5-2 साल से रोज। अच्छा। न्यूज आती है इसी तरह की, वैसी भी आज भी वैसी ही रहेगी न्यूज़, ऐसा मुझे लग रहा है।
5: सर आप कह रहे हैं 2 साल से चल रहा है, इसका कोई रीजन है कि ऐसे क्यों चल रहा है? ये पहले भी हमने देखा था 2022 में,
6: जो यूबीटी पार्टी है उसमें जो अनबन चालू है, वहां से लोग खुश नहीं है, तो ऐसे न्यूज आ रही है।
7: संजय राउत ये सब बौखला गए लोग है, एक तरफ से हमारे आम खासदार, हमारे एमपी फूटे ने ऐसा कहते हैं, एक तरफ से उनको गाली देते हैं, कभी बोलते हैं वो बीके गए, ये सब जो बातें उनकी अंदरूनी बातें हैं, हमको उनसे कोई लेन देन नहीं है। आप लोगों के जो हमें बार बार जो हमें कॉल आ रहे थे, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि ये ऑपरेशन टाइगर वगैरह वो उनके हद तक उन्होंने क्या सोचा मालूम नहीं, लेकिन उनके आपस में जो बिगड़ती हुई परिस्थिति है वो आपके सामने आ रही, अभी पता नहीं कल क्या होगा, ये हमें भी पता नहीं है, कल के बाद वो सभी परिस्थिति खुले दौर पे सामने आने वाली।
8: भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं उद्धव ठाकरे जी को उनके एमएलए एमपी क्यों छोड़ के जा रहे, उद्धव जी जाने, और एकनाथ शिंदे जी के पास जा रहे तो एकनाथ शिंदे ही जाने। भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं, हमारे मुख्यमंत्री का कोई संबंध नहीं, हमारे कोई नेताओं का संबंध नहीं, ना दिल्ली से ना गली से, इसलिए इसका रिलेशन केवल उद्धव जी और एकनाथ शिंदे जी से है, तो बीजेपी उसको क्यों घसीटे बीजेपी को?
4: Let's just also talk about those six Uddhav Thackeray faction MPs who are likely to be switching sides, and those speculations that are doing the rounds. To begin with, we have Sanjay Dina Patil there, who is believed to be wanting to switch sides, the one who has been offered. Do remember Sanjay Raut making those claims that 50 crore rupees is being offered, 15 crores of which is being offered at first. Sanjay Deshmukh as well as part of that. And then we have Nagesh Patil Ashtikar, the third such MP, and Om Raje Nibalkar as well. So that makes it four, and then we have Bhau Sahib Vakchare, the number 5 MP, who is wanting to switch sides, and Sanjay Jadhav as well, making it 6 MPs, and that's the claim that is being made. However, we have

0: to be in motion with Eknath Shinde's camp claiming that as many as 6 of the 9 Uddhav Thackeray camp MPs could possibly be switching sides. Amid the reports, a parliamentary party meeting of the Shiv Sena UBT has been called in the parliament. And all MPs have been asked to come for the meeting. Let's get
1: फोन कॉल आपको आया था क्योंकि एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पर हैं और बताया जा रहा है कि आपके जो पहले सहयोगी हुआ करते थे वो भी यहाँ पर हैं और संभावित है कि लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात होनी है.
2: मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं.
1: आपको कॉल आया था? एक
2: नहीं, किसी का नहीं है. शिंदे साहब का भी नहीं है और कोई मुझे कॉन्टेक्ट किया नहीं.
1: लेकिन यदि शिंदे साहब की तरफ से कोई अपील आती है तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे?
2: नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ अपील मेरे लिए नहीं करेंगे क्योंकि आगे करना होता तो इसके पहले कर चुके होते. लेकिन मेरे से किसी की बात हुई नहीं है. मैं आदरणीय उद्धव जी के साथ हूँ, रहूँगा, रहने वाला.
1: दो दिन पहले जो है उद्धव जी ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी. कुछ लोग पहुंचे, कुछ नहीं पहुंचे. उसी दिन ये साफ हो गया था कि कुछ लोग संपर्क में हैं. उद्धव जी ने उस बैठक में बोला क्या था?
2: नहीं, कुछ नहीं. वैसे तो 4 फिजिकली वो बैठक में थे और 5 लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उद्धव जी से बात की थी.
1: एक सवाल ये भी है ना सर कि क्या ये जो सांसद जो टूट करके जाने की जिनकी चर्चा भी हो रही है, ये इनके पास इनफ नंबर्स हैं? क्योंकि अभी अरविंद सावंत जी जो हैं वो व्हिप भी उन्होंने जारी कर दिया है, पार्टी की बैठक भी बुलाई है, तो आप उसमें भी शामिल होंगे, तो क्या
2: मुझे कुछ मालूम नहीं अभी तक. मैं अभी आप देख रहे हैं कि आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप ट्रेन में ही कर रहे हैं. मैं अभी तक ट्रेन से उतरा भी नहीं हूँ. हाँ. अभी मुझे क्या मालूम है, नेटवर्क तो नहीं है ट्रेन में.
1: इसकी गारंटी आप दे रहे हैं कि आप एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाएंगे?
2: मैं पहले बहुत बार कह चुका हूं कि मैं पहले दिन से उद्धव जी के साथ हूं, कल भी रहूंगा. बस
1: तो एकनाथ शिंदे जी ने संपर्क नहीं किया आपसे?
2: मेरे से संपर्क किसी का नहीं हुआ है.
1: अच्छा, बाकी सारे लोग तो के ऊपर क्लेम है कि उनका संपर्क हुआ, आपको क्यों छोड़ दिया उन्होंने?
2: मुझे क्या मालूम, उनको पूछना चाहिए, आप उनसे जाके पूछ लो.
1: अगर कॉल आएगा तो आप जाएंगे, बात करेंगे?
2: नहीं, बात करने की अभी ये हालत में बात करने की क्या जरूरत है अभी. मैं तो
3: Welcome, you're watching NDTV. I'm Gargi Rawat. Coming up ahead, after Trinamool Congress and the Uddhav Shiv Sena, is there pressure now on the Samajwadi Party to split? A big claim by UP Minister. We'll get you those details. This even as Uddhav Thackeray is mulling taking legal action against rebel MPs. All that and more coming up ahead. Let's take a look at the headlines. Uddhav Thackeray stares at a split. Sources tell NDTV the Maha Deputy Chief Minister Shinde has met with 6 Uddhav MPs in Delhi last night. Uddhav seeks legal opinion, mulls action against them. Uddhav loyalists are up in arms. Sanjay Raut says UBT MPs still loyal to Uddhav, claims UBT MPs are being offered as much as 50 crore to switch sides. Uddhav camp also met with the Lok Sabha Speaker Om Birla. Now, UP Minister OP Rajbhar makes a big claim, says after the split in Trinamool Congress and the Uddhav Shiv Sena Samajwadi Party, next names Ram Gopal Yadav, says the entire Samajwadi Party poised to join the BJP. The RSS office is attacked in Jharkhand. Petrol bombs are thrown, one exploded, the other failed to detonate. Suspects fled immediately. A probe is now underway. Donald Trump says the Strait of Hormuz will remain toll-free after the peace deal. Iran, however, disputes the claim, says it can charge fees for maritime services. Israel raises concerns over risks of any deal with Tehran. And the Modi-Trump bilateral at G7 will take place today amid fresh strain in India-US ties after the death of 3 Indian sailors. All eyes on these talks.

0: पांडे जी की तरफ से कोई फोन कॉल आपको आया था?
1: मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं।
0: आपको कॉल आया था?
1: नहीं, किसी का नहीं आया था। शिंदे साहब का भी नहीं है और कोई मुझे कॉन्टेक्ट किया नहीं।
0: लेकिन यदि शिंदे साहब की तरफ से कोई अपील आती है तो क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे?
1: नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ अपील मेरे लिए नहीं करेंगे, क्योंकि आगे करना होता तो इसके पहले कर चुके होते, लेकिन मेरे से किसी की बात हुई नहीं है। मैं आदरणीय उद्धव जी के साथ हूँ, रहूँगा, रहने वाला।
2: Nandi TV also spoke to some of the MPs of the Udhav faction on this entire buzz and speculation. Listen in to what they said.
3: Currently in Delhi?
4: No, I'm in Mumbai.
3: Okay. And sir, what will you say about the speculations that everyone is in touch with?
4: I'm tired of the press and tired of all the speculations.
3: Okay.
4: So what if something is to happen, it will happen.
3: Right.
4: Just wasting our time is no point.
3: No, sir. Clearly you have a point. That Eknath Shinde is in Delhi and there are sources say that they are going to meet all the rebel MPs from Shiv Sena UBT.
4: I've got no news about it. I'm tired of all the media calls.
3: Can we say that that not all MPs are in touch with Shiv Sena? And yes.
4: Yeah.
3: But as an MP, it's being told that you guys are unhappy with Uddhav Thackeray and his functioning. What will you comment on that?
4: Is any human happy with anything?
3: Right.
4: General human tendency to be not happy.
5: पुणे में।
6: अच्छा, पुणे में ही है। तो ये जो मीटिंग की बात चल रही है सर, उसमें आप दिल्ली आएंगे या अभी वहीं रहेंगे आप?
5: मेरे को नहीं पता चल रहा है कि मेरा नाम क्यों चला रहे आप सब लोग।
6: अच्छा, तो आप
5: पुणे में?
6: आप पुणे में ही है। आप उद्धव,
5: मैं आपके माध्यम से ही मैं जान पा रहा हूँ कि दो MP आए, तीन MP आए। मैं तो पुणे।
6: अच्छा, आप पुणे में ही?
5: आपकी वजह से क्या हुआ पता भी नहीं चल रहा, कौन सा न्यूज सही है और कौन सा गलत है, सब चला रहे हुए।
6: तो सर, अभी आपका क्लियरिटी क्या है, आप उद्धव के साथ ही हैं या आपका जो लिस्ट में नाम आ रहा है वो सही है?
5: अभी फिलहाल मेरे पिताजी का जो मर्डर केस है
6: जी,
5: उसका डिसीजन आने वाला है 20 तारीख को, तो उसके इसमें हूँ मैं।
6: अच्छा, लेकिन पार्टी के साथ ही है अभी या?
2: Now, Shiv Sena leaders and leaders of other parties have also reacted to all these developments. Listen in to what they've had to say.
7: जो शिव सेना के जो रिबेल में हैं, जो UBT सेना के जो भी पार्टी स्विच करने की इनकी बात चल रही है आपके साथ?
8: अच्छा, अभी कहाँ दिख रहे हैं तुम?
7: सर, वो कह रहे हैं कि दिल्ली भी आए हुए, एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे के घर पे मिलेंगे भी। और
8: मुझे कुछ भी मालूम नहीं है उसके बारे में।
7: सर, ये संजय राव जी ने ये भी बोल दिया कि 15 करोड़ दिए जा रहे हैं इनको पार्टी स्विच करने के लिए।
8: संजय राव तो रोज अलग अलग बातें कह रहे हैं ना। कल रात को 15 करोड़ बोला, आज कुछ 50 करोड़ बोल रहा है।
7: ऐसी से फिर आप कह रहे हैं कि कोई टॉक्स ही नहीं हो रही है?
8: उसे तो कुछ मालूम नहीं इसके बारे में। ऐसी तो 2 साल से ये खबरें आ रही है कि बाबा ये लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ मालूम नहीं इसके बारे में।
7: सर, फिर वो जो ऑपरेशन टाइगर की रूमर्स हैं, उस पर आप क्या कहेंगे?
8: वो तो 2 साल से चल रहा है ना, रोज न्यूज में आ रहा है। हुआ क्या अभी तक? नहीं हुआ ना।
7: अच्छा, ये भी सर फिर आ रही थी न्यूज की उद्धव ठाकरे की लीडरशिप से
8: ऐसे ही रहेंगे वो, संजय राउत और अरविंद सावंत को मालूम जो कुछ सुबह से चालू है।
7: अच्छा, आपकी भी इंटरनल कोई डिस्कशन इसके बारे में नहीं हो रही है?
8: नहीं, इंटरनल डिस्कशन कुछ भी नहीं।
7: तो जो दिल्ली की मीटिंग्स हैं, जो सारे यहाँ पे आए हुए हैं?
8: नहीं, कुछ भी मालूम नहीं इसके बारे में।
7: अच्छा, तो मौजूद है किसी पे भी कोई अभी बातचीत आपके साथ?
8: कुछ भी नहीं, तो 2 साल से चल रहे हैं ना, 1.5-2 साल से रोज। अच्छा। न्यूज आती है इसी तरह की, वैसी भी आज भी वैसी ही रहेगी न्यूज़, ऐसा मुझे लग रहा है।
7: सर, आप कह रहे हैं 2 साल से चल रहा है, इसका कोई रीजन है कि ऐसे क्यों चल रहा है? ये पहले भी हमने देखा था 2022 में।
8: जो UBT पार्टी है उसमें जो अनबन चालू है, वहां से लोग खुश नहीं है, तो ऐसी न्यूज आ रही है।
9: संजय राउत ये सब बौखला गए लोग है। एक तरफ से हमारे आम खासदार, हमारे

0: प्लीज फूटे नहीं ऐसा कहते हैं, एक तरफ से उनको गाली देते हैं, कभी बोलते हैं वो बीके गए, ये सब जो बातें हैं उनकी अंदरूनी बातें हैं, हमको उनसे कोई लेन देन नहीं है। आप लोगों के जो हमें बार बार जो हमें कॉल आ रहे थे इसलिए हम बता दे रहे हैं कि ये ऑपरेशन टाइगर वगैरह वो उनके हद तक उन्होंने क्या सोचा मालूम नहीं, लेकिन उनके आपस में जो बिगड़ती हुई परिस्थिति है वो आपके सामने आ रही, अभी पता नहीं कल क्या होगा, ये हमें भी पता नहीं है, कल के बाद वो सभी परिस्थिति खुले तौर पे सामने आने वाली।
1: भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं उद्धव ठाकरे जी को उनके एमएलए एमपी क्यों छोड़ के जा रहे, उद्धव जी जाने और एकनाथ शिंदे जी के पास जा रहे तो एकनाथ शिंदे ही जाने, भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं, हमारे मुख्यमंत्री का कोई संबंध नहीं, हमारे कोई नेताओं का संबंध नहीं, ना दिल्ली से ना गली से, इसलिए इसका रिलेशन केवल उद्धव जी और एकनाथ शिंदे जी से है, तो बीजेपी उसको क्यों घसीटे बीजेपी को।
2: Alright, some breaking news now coming in, and after Operation Bengal to split the Trinamool Congress and then the Uddhav Thackeray Shiv Sena, now there's been speculation about attempts to split the Samajwadi Party, and a minister of Uttar Pradesh, Rajbhar, has made a claim that in fact the Samajwadi Party, the entire party is going to join the BJP, but now this has been rubbished by Ram Gopal Yadav, who had been named by OP Rajbhar, who said that Ram Gopal Yadav has submitted a letter to Home Minister Amit Shah. NDTV spoke with Ram Gopal Yadav, who's dismissed and rubbished all these claims. Listen in to what he said.
3: मैं कह रही थी जी सर, ये जो ओपी राज बिहार ने बोला ये समाजवादी पार्टी का, उस पर आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि आपने लेटर दिया है अमित शाह जी को कि समाजवादी पार्टी में स्प्लिट हो रहा है,
4: ऐसा है? अमित शाह जी को आप पूछिए, कोई लेटर दिया है मैंने? नंबर एक बात, नंबर दो ये कि ओम प्रकाश राजभर की बात को इस देश का कोई आदमी गंभीरता से लेता नहीं है, वो इस तरह की हमेशा बात करते हैं जैसे सन्निपात हो जाता आदमी को, तो उसे खुद नहीं मालूम होता है वो क्या कह रहा है और उसका अर्थ क्या है, तो सन्निपात की स्थिति से गुजर रहा है वो, अपनी पार्टी तो बचा नहीं पा रहा है, उसकी पार्टी सब समाजवादी पार्टी में विलय करना चाहती, वो रामगोपाल के बारे में कह रहा है, तो रामगोपाल ने अगर कोई चिट्ठी दी है तो माननीय गृह मंत्री से पूछिए कोई चिट्ठी लिखी है रामगोपाल ने
3: जी। सर फिर आप क्या कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में कोई प्रॉब्लम्स अभी आज सच नहीं है, कोई फैक्शन?
4: कोई प्रॉब्लम ना है ना होगी, ये बातें करने वाले सिर्फ अफवाहें फैलाने का काम करते हैं और ये सब गलत साबित होंगी, जनता इनको गालियां देगी।
2: All right, let's go across to Ajay Dubey now for more on this entire story. And Ajay, we just heard Ram Gopal Yadav there absolutely dismissing and trashing these claims made by Rajbhar. Rajbhar, who is a minister in the UP government, in fact claiming that the entire Samajwadi Party is ready to split and join the BJP, saying that after Trinamool Congress and Shiv Sena, now Samajwadi Party is next.
5: Definitely, I just had word with Ram Gopal Yadav and he was saying that nobody takes Om Prakash Rajbhar seriously, not even his family. So whatever claim Rajbhar is making, is it going to be a serious thing? I am joined here by the leader, workers of Samajwadi Party. भैया आप लोग बताइए, Om Prakash Rajbhar जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बहुत से सांसद हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी, कैसे देखते हैं उनके बयान?
6: उनसे बड़ा कोई झूठा नहीं है, समझ रहे हैं आप? और आप उनसे पूछ लीजिए कि उनके खुद ही जितने भी एमएलए जीत के आए हैं वो खुद समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, वो क्या क्या शाम को कहेंगे क्या सुबह कहेंगे उनको पता नहीं है, आप उनकी बात करते हैं? पियरका चचा की, जो खुद पता नहीं है कि कल किस पार्टी में थे, आज किस पार्टी के साथ खड़े होंगे, कल किसके साथ खड़े होंगे, खुद लार टपकाए घूम रहे हैं समाजवादी पार्टी में आने के लिए।
5: आप कह रहे हैं राजभर खुद
6: आना चाहते हैं भाई?
5: ये इतना वो क्या, Om Prakash Rajbhar इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, रामगोपाल यादव जी का नाम ले रहे हैं, आपको लगता है रामगोपाल यादव जी कभी वो जरिया बनेंगे कि सपा के सांसद टूटे?
6: रामगोपाल यादव जी की पैर की धोन के बराबर नहीं है वो, और उनके कितने विधायक उनके साथ खड़े हैं ये मीडिया के लोग आप सब जानते हैं।
5: क्या लगता है रामगोपाल यादव कभी जरिया बनेंगे सपा को टूटने का?
7: कहां वो, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, वो तो शाम को कुछ भी पीते हैं सुबह कुछ भी पीते हैं, तो उनको तो हम लोग तो मेढक की तरह देखते हैं, वो तो मेढक हैं एक तरीका से।
5: Om Prakash Rajbhar को
7: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
5: आप बताइए भैया, लग रहा है रामगोपाल यादव जी तोड़ेंगे?
8: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं तोड़ेंगे, पियर का चाचा की खुद की बात का भरोसा नहीं है, अभी चार दिन पहले कहा करते थे।

0: ए योगी, तुझको ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती, और जरा भी जगह मिली और पियर का चाचा ने पैर टेक दिए और जाकर के वहाँ मलाई खाने के लिए पहुँच गए। पियर का चाचा कोई भरोसा नहीं, क्या बात करते हो आप? ओम प्रकाश राजभर जिनको कहते हो, ओम प्रकाश राजभर की बात का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कहें और कहाँ चले? अभी उनकी बात का ये कहते मंत्री हैं और इन्होंने पंचायत चुनाव की डिस्पैच घोषणा कर दी और उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, पियर का चाचा कुछ पता ही नहीं है।
1: देखिए, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आई एम हियर जॉइंड बाय द वर्कर्स ऑफ समाजवादी पार्टी एंड दे आर यू नो अक्यूजिंग ओम प्रकाश राजभर व्हाट देयर लीडर इज सेइंग दैट ही इज नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन, नोबडी टेक्स हिज थॉट सीरियसली एंड वर्कर्स आर आल्सो सेइंग दैट नोबडी टेक्स ओम प्रकाश राजभर सीरियसली।
2: Right, those SP workers absolutely outraged and in true UP style denying all these allegations that are being made by OP Rajbhar. Well, moving on now to news coming in from Jharkhand, and unidentified assailants allegedly hurled petrol bombs at an RSS office in Ranchi in Jharkhand. This took place at around 12:36 a.m. It triggered security concerns in the area. There you can see the CCTV visuals which show that two individuals arrived on a vehicle and then they threw these petrol bombs at the premises, fleeing from the spot. Police have launched an investigation and are scanning CCTV footage to identify these attackers and determine the motive behind this attack on an RSS office. The BJP strongly condemned it, calling it a direct attack on the RSS and alleging a larger conspiracy behind the assault. BJP leaders have also questioned law and order situation in Jharkhand and demanded the strictest action against those who were responsible. One of the petrol bombs exploded, the other did not.
3: रांची के निवारणपुर स्थित यही वो आरएसएस का दफ्तर है जहां पे रात करीब 12:30 बजे दो हमलावर आए थे और पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया और यहां पे पेट्रोल बम फेंक के चल गए। जो सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें सामने आई है उसमें दो व्यक्ति हैं और उनके द्वारा फेंका गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आप यहां पर देख रहे हैं कि जो जाँच अधिकारी हैं और जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यही वो जगह है जहां पे ये बम फेंका गया है जिसका अवशेष आपको दिख रहा होगा। ये पेट्रोल बम था जिसका इस्तेमाल किया गया है।
4: एक छत के ऊपर और एक नीचे दो पेट्रोल बम से हमला हुआ। दोनों के कारण कोई क्षति नहीं हो पाई, ईश्वर की कृपा से हम लोग बच गए। एक ऊपर फटा है, नीचे वाला डिफ्यूज हो गया।
3: जिस समय ये बम फेंका गया क्या दफ्तर में लोग थे?
4: जी, सब लोग सो रहे थे। यहाँ पे प्रांत प्रचारक और भी कई प्रचारक और कार्यकर्ता जो कार्यालय में रहते हैं वो सब यहीं थे।
5: We have seen the kind of vitriolic statements being made against RSS recently by certain people and then this attack happens. One should not link the two, but one should be very clear that there is some kind of poison and vitriol that is being spread about the RSS and that has dangerous consequences. There should be a complete probe, a deep probe, and then we should unearth who is the mastermind behind such kind of things and what is the objective. Why such intolerance and hatred and nafrat is being peddled by certain elements against nationalistic organizations like RSS.
2: All right, with that, time for us to slip into a short break. On the other side, we'll get to the latest on the G7 summit in France. Stay with us.

0: An uncle of Akhilesh Yadav had even submitted a list of MPs to Union Home Minister Amit Shah. Rajbhar says several MPs are looking to save themselves and that the Yadav leadership has done injustice to Dalits. Meanwhile, SP Chief Akhilesh Yadav hit back at the BJP, saying breaking parties is their habit. That's what they know to do. He also went on to say that those who are scared are free to leave the party. With opposition parties facing turbulence across states, Rajbhar's remarks have triggered speculation over the political future of the Samajwadi Party.
1: Rajbhar ji, kya dawa hai aapka?
2: 100% sahi. Rajbhar jo bolta hai, seena thok ke bolta hai. Sahi bolta hai.
1: Arre, aap to us pure prakriya ke hissa the. 22 ke chunav mein humne dekha, aap puri ranniti ka hissa the. Akhilesh ji ke bagal mein rehte the. Tamam trust ki baithkon mein, alag alag jagahon pe unke sang rehte the. Kaun hai neta? Jara naam bhi bata dijiye, kaun kaun tod ke jane wale hain?
2: Dekhiye, Ram Gopal ji, suchi banaye, aur केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को चिट्ठी दिए और देखा दोनों लोगों को मुस्कराहट हैं। जहां दो दिलों की मुलाकात हो, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी, है ना? तो उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हम लोगों का जान बचा रहे, हम लोग तैयार हैं, ये नेता हैं, सांसद, इनसे संपर्क कर लीजिए, ये सब लोग आपके साथ आने को तैयार है।
1: सब नेता तो आपके दोस्त हैं, 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, नाम बताइए कौन कौन है जो तैयार हो गया आने के?
2: भैया नाम बता दे तो काम गड़बड़ा जाए ना। आप देखिएगा ना, थोड़े दिन इंतजार करिए, ज्यादा दिन नहीं।
1: क्यों ये लोग आएंगे, क्या मिलेगा बीजेपी के साथ आने में?
2: क्या मिलेगा जी? जान बचे बचाव बदे लोग परेशान है, जो लोन लीले है लोग, कोई सीबीआई का जांच चलत हो, कोई के ईडी का जांच चलत हो।
3: उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा? और लालच दे करके, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए।
0: All right, so strong denial there by Akhilesh Yadav. With that, we'll slip into a short break. Coming up on the other side, the latest on the G7, all eyes on the Trump-Modi bilateral.

0: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना,
1: बाल्टी,
0: और मॉनसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना। पसीना मत बहाओ, बर्जर रूफ कूलेंट सील लगाओ, ये छत के क्रैक्स को करे सील और आपको दे ठंडा फील। बर्जर रूफ कूलेंट सील।